0: क्या यार आवाज, बल्ले बल्ले बल्ले, जी कर तो सुनी जाओ यार। जो मिठास है सुरा जड़िया लाइया, मुर्कियां जड़िया लाइया यार। साबर कोटी साहब मैं कहना दिल ही जित लिया। 4552 हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हेलो नवी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सत श्री अकाल
0: जी।
1: हाँ जी, मैनू ना फोन चाहिदा, क्रिसमस लाइट कोई लगांदा होवे।
0: क्रिसमस लाइटां? हाँ जी, दे देने जी।
1: हाँ जी, दसो।
0: क्रिसमस ता दूर है जी, पहला ही याद कर ली क्रिसमस।
1: हाँ जी, वो फिर विंटर टाइम आंदे नहीं।
0: हाँ नहीं, वधिया गल है, हुण कर लेना चाहिए काम। नंबर है जी 416।
1: हाँ जी, ओके।
0: 356 48
1: 7-0
0: ग्रोसरी करनी है। फ्रेश फूड सेंटर 12570 कैनेडी रोड, कैनेडी ते डूगल दे कॉर्नर ते कैनेडी ते मेफिर दे बिल्कुल नाल। फ्रेश फूड सेंटर ते एक बार तुसी जरूर पहुंचना। हार्डवुड जॉइंट, थोनू हार्डवुड लैमिनेट वाइनल टाइला कोई भी फ्लोरिंग का समान चाहिए। हार्डवुड जॉइंट टोरबम एंड स्टील्स दे कॉर्नर ते, ते मैं कहना क्या सर्विस है, क्या वरायटी है। तुसी देख के कहोगे आ भी लै लिये, वह भी लै लिये। एक ना सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते तुसी जरूर पहुंचना। सिंपली इंडियन, सिंपली द बेस्ट। सिंपली इंडियन ते जाओ, अपने मनपसंद का खाना पीना खाओ। इन्होंने एक तो जलेबी एक पाउंड नाल एक पाउंड फ्री लाई है, मोहीटोज ते होर बहुत सारे ड्रिंक बाय वन गेट वन फ्री लाए ने। आने वाली दिवाली ते बहुत वड्डे टेंट मठियाइयां 150 तो वध गिव अवेज, लाइव डीजे, पंजाबी लहरा लाइव वन लोकेशन होगा। सो जरूर तुसी याद रखो सिंपली इंडियन 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल, गार्डन ब्रुक कैसलमोर, 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट मिसागा फाइनेंशियल एंड 15 फेंडर वे बवेड एंड शिंक्यूजी। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट थोड़े लिए हाजिर है। प्रदीपा जी भी थोड़े लिए अवेलेबल, जे तुसी फ्रिज स्टोव डिश वॉशर की कोई रिपेयर करवानी है, कोई अपलायंसिज थोड़े पुराने ने चंगी तरह चल नहीं रहे, अपलायंसिज नूं भज्जण ला देणगे। 6476223203 एंड पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, नवी रूफ लगन वाली है, रूफ की रिपेयर होने वाली है। पैशन रूफिंग नूं तुसी फोन करना। गुरलाल भाई जी हुणे फुली इंश्योर्ड कंपनी है, बड़ा खूबसूरत काम करते ने, एंड नाल वारंटी भी थोड़ा मिल रही है। सो पैशन रूफिंग 647-919-9493 नंबर है, 647-919-9413 नंबर है। गाना लाइए दो बोल यार, निर्वैर पन्नू की नवी एल्बम चो।

0: नाम मैं सजदे करदा रहंदा सा हाँ। तू मेरा नाम लिख के कदे मिटाउंदी सी के नहीं।
1: क्या बात है। 905-673-3337 देबी देबी लाइव आ रहा ब्रैम्पटन दे विच मैं तां सुना रहा
0: ओ दाने दाने दाने दाना दाना दाना साडा इको दाना कईयां बराबर।

0: @richmohan. Contact us at richmohan.com.
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150।
1: बजुर्ग सोचते हैं भी साढ़े क्लब हैं भी सानू सिटी वाले पैसे देंगे जां ग्रांट देंगे ये फिर भी थोनू मिलनी है। असीं तां करप्शन दूर करनी आ भी जो कुछ जवा असीं तां हॉस्पिटल लैके आना यूनिवर्सिटी लैके आनी आ असीं इत्थे क्राइम घट करना ते वेजेस फ्रीज करने आ असीं ये चाहते हाँ तो साढ़े वेजेस नहीं वध रहे इन्हां दे वेज फ्रीज होने चाहिए आ। सिटी का पैसा कितने गया अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हैगी थानू शायद वध पैसे मिलन। मैं बजुर्गों नूं बेनती करदा जिहड़े तुहानूं ग्रांट मिलदे मिलने चाहिए ग्रांट तुसीं भी असीं तुहानूं भी खुश देखना चाहते हो खुश रहो पर हाँ सोच समझ के वोट पायो तुहाडे बच्चों का फ्यूचर हैगा आ। बहुत बहुत धन्यवाद। जे किसी को किसी गल की गलती लगी या दुख लगा तो आ चेयर अवेलेबल होंगी है साढ़े ना आके संपर्क कर लियो असी थोड़े लिए बैठे हाँ। एक मीडिया हब हैगा जरा सच बोलने की कोशिश लग्या हैगा करन जे लगता सारे को गलती होगा कि बैठो गुरु घर में जो कुछ होया उन्होंने मैं पूछन लगा हुआ हैगा हाँ वो पैसा कल कि गया पर है जवाब नहीं मिल रहे पर लैके हटा गए थोड़ा भी फर्ज बनता भी जाके पुछो भी जे बंदे इनवॉल्व से दसो कौन आना बहर क्या कि नहीं क्या कि रोकया की काम होया कि नहीं होया चाहे ना होया हो इधर गल करके लवेंगे। लो जी टाइम्स मौती वाल जा रहा एक बार मैं फिर दस देव खोजियो सोचियो कि जिड़ी भी सिटी में रेंदे कि वोट पानी मैं ही दसदा जी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई ब्रैम्पटन।
2: सर्दी के दिन आने वाले हैं अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
3: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810 दैट इज 6476562810।
1: ड्राइव कर रहे हो, सोनो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
2: ड्राइविंग लाइसेंस?
1: नो।
2: पुलिस ऑफिसर?
1: नो नो।
2: ट्रैफिक लाइट्स?
1: नो।
2: डन।
3: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 6473251900 6472599100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
5: भाई ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
6: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
7: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
8: सुनो जी किथे हो, 11:30 हो गया रात दी, घरे नहीं आना अज?
9: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा हैगा।
8: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नूं 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
9: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने, जिन्हां दा कहंदे इक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो। सेविंग 100 डॉलर दी 905-458-1300।
10: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्डा नालों किते घट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
11: आज ही होम एक्विटी वीजा लेने दे लई कॉल करो 905-671-2000 905-671-2000। कुछ शर्तें लागू होंदी हैं।
12: यार अजकल इकोनॉमी
13: घर नूं पेंट करवाउणा हुंदा है, कंफ्यूज हो जांदे हो, बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर, पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे? फायर स्टेशन, फाइव स्टार होटल्स, बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन, उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन। इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा। 7 साल दी कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी। फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401 416-816-8401-84-01।
14: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने चंजर। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
15: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, विल बनाउण लई, फैमिली लॉ जां फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट। फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211।
12: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
16: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-9941।

0: नजारा आ गया हुए। जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
2: मैं क्लाइंट नू मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुण ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ उन्होंने, प्राइवेट बूथ्स में फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एम्बियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुण कॉल करो 9054512600 9054512600।

0: पहुंचो 30 रामलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, इतनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद

0: 619-6000।
1: ब्रैम्पटन वासियों रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौंड मैदान बिछान।
2: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दे विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, रिस्पांसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
1: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
2: पेड फॉर by Prempal Gill।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने, 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज
2: रेडियो भी है।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जो एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। होर कोई सेवा?
4: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
6: क्रिटिकल मॉर्गेज, आरईएसपी, आरआरएसपी, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100 6473003100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।

0: Community.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Hello. Kataria Tours and Travel.
1: Hanji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tikta chahidiyan si.
1: Oh, India ki tusi jitho marzi diyan tikta le lo. India kithe jana?
2: Char tikta Delhi diyan te do Amritsar diyan. Mil jangiyan?
1: Mil jangiyan. Bilkul mil jangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tikta kado diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Par usse man service te sab to vadiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 9056 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab. Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call
1: 905-794-4667.
2: Hello everyone, my name is Jagraj Sekhon, running to be your next counselor for ward number 2 in Caledon. Me and my family have proudly called Ward 2 as our home over 10 years. I believe every resident needs to be heard, deserves to be represented, and I will be your counselor, which will be always connected with the community and will be approachable for all your local concerns and issues. I would be honored to earn your vote and support. Thank you very much.
3: पूरे 40 साल हो गए रे अपने ब्याह नु फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है
4: मेरी मन्नो आपा पिंड ना चलिए
3: धर्म नाल आ ता तू मेरे मन दी गल ही कहती है पर इन्नी छेती टिकटा कित्थों मिलन गया
4: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर गई साथ है उना दा अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालों तो or 905-796-8800 or visit giltravels.ca.
5: दुसहरा करवा चौथ अते दिवाली दियां खुशियां नु बनाओ और भी मिठा
6: इंडियन स्वीट मास्टर दियां लाजवाब मिठाइयां दे नाल
5: घर आए मेहमानां लई करवानी होवे कैटरिंग
6: या परिवार ते दोस्तां नाल बाहर डाइनिंग करन दा मन होवे इंडियन स्वीट मास्टर कोल है अपना डाइनिंग हॉल
5: ते जे मन करे स्ट्रीट फूड दा ता इत्थे मिलेगी स्ट्रीट फूड वाली पूरी वाइब
6: नाल ही मिलनगे तुहाडे मनपसंद लाजवाब स्ट्रीट फूड दे स्वाद
5: त्योहारां दियां खुशियां होण या रोजाना दी कोई खास ट्रीट इक्को इक थां इंडियन स्वीट मास्टर तुहाडी हर खुशी लई हर लोड हर वेले तुहाडे नाल
6: इंडियन स्वीट मास्टर वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-450-2800
5: 905-450-2800
7: I am Dev Tatla and you are not

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: आज खुश तो बात हो गया था।
3: वो तो होना ही है जो तो तीनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तैन लगता बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
4: चल क्या रहे हैं यहाँ पर?
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
6: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील रोड यूनिट।
7: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादिया नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणा तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
9: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
10: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
9: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
10: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
11: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
10: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
11: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
10: 416-509-1509
11: और विजिट insuranceforyou.ca।
12: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
13: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
14: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।
15: Listen live वतनों दूर रेडियो with सुखी निजर।

0: Listen live Vatnodo Radio with Sukhi Nijjar.
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647
2: रोज ही लगदिया ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनिया खुशियां दे जश्न मनाओ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन कर देने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन
3: आज
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले ढिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए जी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
5: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
4: पर ढिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां ढिल्लोवीडियो.com होर कोई सेवा
6: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
7: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
8: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
8: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
10: सुनो जी भूख लगी है पिज्जा डिपो ले आया 4 नवे देसी फ्लेवर्स चटपटा अचारी मक्खन वर्गा मखनी तड़के वाला हाका ते अग लौंदा शेजवान कोई भी नवा फ्लेवर लो लार्ज मिलेगा मीडियम दी कीमत ते कोड वर्तो 9711 लिमिटेड टाइम ओनली सिर्फ अक्टूबर 30th तक पिज्जा डिपो स्वाद नवा प्यार पुराना
11: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमा रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाजमा एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 61141 मेफील्ड रोड यूनिट

0: स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन लूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला
3: Solution to promote your business. Desh Pardesh, Prime Time Radio and TV. Tohade Ang Sang, 24 Ghante Satto Din. Huntak Desh Pardesh, Prime Time Radio, Hazara Hi Business Di Grand Opening Live on Location Nal Karwa Chukhe, Te Karwa Raya Hai. Impossible is nothing. Tusi Bhi Apne Business Vich Vada Karan Vaste, Desh Pardesh Radio Da Live on Location Friday, Saturday Karwao. For bookings, call Tajinder Sidhu at 416-725-2551. 416-725-2551.
4: Okay. तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट

0: करेगा।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: चलो एम 530 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो ना जुड़े हुए हो तुसी एक बारी फिर सारे नो जी आनो जी ते अगले कॉलर नो पलिए दे दे कौन लाइन ते।
4: हां जी 0093 जी सत श्री अकाल।
5: ਸਿਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ?
4: ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
5: ਸਿੱਧੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ?
0: ਬਿਲਕੁਲ
5: ਜੀ, ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
5: ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆ ਬਹਾਰ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ
5: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ।
0: ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। आने से उसके आए बहार, क्या बात है, बड़ा प्यारा गीत है रफी साहब का। गोल्डन स्टार मैं गल करा कंस्ट्रक्शन वाले की, बड़ी सोहनी बेसमेंट तैयार कर देने, प्लस कोई भी छोटा मोटा रेनोवेशन का कोई भी काम आ, जिवें बाथरूम रेनोवेशन हो गई, किचन रेनोवेशन हो गई, टाइलों का काम हो गया, फ्लोरिंग का, पेंटिंग का, घर की पेंट करवाना है जी, फ्रेमिंग का, क्योंकि दिवाली आ रही है तो खास डिस्काउंट दे रहे हैं तुहानू जी, दशहरे से दिवाली से देश भर देश हवाले देन ते घर चमकाओ पूरा, फ्रेमिंग ते ड्राइव वॉल का काम करवाना, डेक का या फेंस का काम करवाना। तो अजकल स्पैशल आए ने, तीन अपग्रेड कर रहे हैं बाथरूम, वह फुल बाथरूम जो होंगे अपने, तो नहाने वाला भी बिच ही, वारंटी वगैरह सारिया नवी हो, टाइल नवी हो, स्टैंडिंग शावर हो गए गिलास वाले मॉडर्न टाइप, तो सारे 8,000 कर सारा। नंबर है 416-678-8100, लॉफर आने से उसके आए बहार।
4: जी
0: जितेंद्र साहब जी।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: करेगा।
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स, बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूजडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारी ही लोकेशंस पे। डाइन इन टेक आउट एंड केटरिंग ऑल्सो अवेलेबल, कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस मतलब

0: सेकंड मोर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381